तू खड़ा साफ बन के कान भर के मिलेगा ना कुछ मुँह खोले जबी तू घान बके एहसान करते तुझ पे तेरे दोस्त करता पीठ पीछे बातें तू एहसान फरामोश सब भूख तुझे कल्पना का रोग दिखावे का सज्जन तुझे चाहिए शारीरिक भोग तू नीच प्राणी में तेरा प्राणा कर दूंगा चोख